उम्मीद दी वो की बाबा सास तो बिल्कुल टांग वाना द्वानो की ठीक ठाक रवानवी लशपश पर रवानवी बरहाल संगत हाउस तो मोवली ची असल की नंदलता नेटवर्क लगाई शुदा अलग मसला दा पेशावर की नो सिंपल नेटवर्क चिकम दे आगशान कार न की आ चिकम द मोबाइल सिग्नल दी आगशान स्टेबल ने दी सासु मैसेज चिकम दे आगा क तासु मा तो हम के नुन इंसान सर जो बिल्कुल निशम शामिल वाले जिक चिमा तो बराजी न कना जी सरा इंटरनेट दगल था अवेलेबल भी तासु सरा इंटरनेट कार के भी नेटवर्क दर सरा द वाईफाई वगैरह या सिंपल सिग्नल नेटवर्क तासु सरा ठीक दे नुतन तासु माता द व्हाट्सएप दलारी मैसेज को वाले शे कचा सरा व्हाट्सएप अवेलेबल भी अगर तासु माता को वाले शे अगर तासु मैसेज बस जान सरा द इज ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्रोग्राम के शामिल हो में ठीक दे जी बरहाल ने इस ना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान हमेशा कोशिश करे खाविश करे दे जिस तरह सुधर पारे बेहतरीन न बेहतरीन प्रोग्राम रावले दे खुद प्रोग्राम सर सर चिकम दे सुधर पारे डेर औसम अमेजिंग प्रोडक्ट हम तैयार करी दी शामिल करी दी इंक्लूड करी दी अवेलेबल करी दी इंशाल्लाह चाचा चा हम इंतहाब करे दे चाचा हम यूज करी दी चाचा दजान द पारा गिस्ती दी अगी मुतमाइन दी सेटिस्फाइड दी जमुंगना जमुंग दी इजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान ना नुदाशान इंशाल्लाह यो जलता सु हम इस्तेमाल के यो जलता सु हम यूज के इंशाल्लाह इंशाल्लाह तासु भी आगुरी चीज सुमर बेहतरीन रिजल्ट तासु तमिलावेगी सुमर बेहतरीन क्वालिटी तासु तमिलावेगी कावे तासु जमंग द क्रीम इस्तेमाल कोई का जमंग द पेशवाश थी

अच्छा जी, द टांग चिकम यो सोनू एड्रेस पीर पठान जनरल स्टोर अब सरहान प्लाजा ग्राउंड फ्लोर दुकान नंबर 368 बिजनेस जनरल स्टोर दुकान नंबर 57 अब सरहान प्लाजा टांग और जमजम जनरल स्टोर ग्राउंड फ्लोर दुकान नंबर शपगम ओम अब सरहान प्लाजा अलमलका जनरल स्टोर ग्राउंड फ्लोर बाई तरफ दुकान नंबर 5 अब सरहान प्लाजा टांकिबा जमुग दगैदा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान तमाम प्रोडक्ट मिलावेगी जी तसु वर्तले और दगा इंतहा कवलेशी।

0: तड़ा माजे मिर्जी दार तो ये जे पता शापर सी देता शाय उपस्थित थी
1: जानते से तारखाना पर शापर के हम एश्मा वाशिंग पाउडर ओखस्ते थी
0: एश्मा वाशिंग पाउडर मड़ा मिर्जी मोहकोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपनेवल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जी दस्तर अंगे सरा प्रोवरे
1: बिल्कुल तारखाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श कड़ा ले हो चे कराना में कुर्ता एश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी और स्टोल कुर वाला नफाशोल दी
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब रो एश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना एश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शोले को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात एश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सब ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शोए मार्केट से देशवा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला विजी।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ाउल्लाह तो वेलकम है शाज़ी अजमा वरावर दखीर सरा पावल जल मैसेज करे दे शाज़ी। ये तो पता नहीं कि शो लाइव है या नहीं, बट फिर भी वेलकम स्टूडियो में शी फरा है मसी ना ना सी फरा प्रोग्राम बिल्कुल रिकॉर्डिंग और तशासी बिल्कुल रिकॉर्डिंग प्रोग्राम दिसी था वशत रवान दिसी। वैसे आपके लिसनर इतने कमजोर नहीं है कि इतने छोटी बातों पर आओ के ना सी तो हमारे अगमे तुरत हमें में हम जन गनम हो या सैद रहमान भी चने हुई थी तो डाले ऐसी बरकी हुई फसल अंडे फसल अंडे दी चिलम परी को जमा दी स्पीन खुले देना मानल सवाल ने वाह डेर शाम और दले वने में इंतजार शाम न जोड़ा जाए मोश की साल असर गुजी ना जब स्पीनो अनंगो दी जल फिजान की हमारा दी द जंदुनों बागा खुन वाज मेरा मन नसी बरकी से बरके शमा गोरे शासी भाई जाना जपी जमा जन तो डाले छे मत पनूर सिफत नकड़े जन उटेंशन कंपने पफा मलगर यमा यूजल उटेंशन इस्तेमाल का नूरे कंपने बदन आखिर शि मैन वा वाजी वा डेर खा पटांग नूर कंपने डेरे जपा दुकान से नोटेंशन तपोस को माता खोर मिराल बिचनी मन मद खोरे ना मन मदी यू आर ग्रेट। अब की भी हम रज में सूद बाई बेस्ट प्रोग्राम और नोटेंशन जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब जबरदस्त है और मुझे ज्यादा शैम्पू पसंद है नोटेंशन जिंदाबाद नजमा में जिंदाबाद डेरा मन नसी खुशहाल शी जमा खोरी इज्जत मन शे कदर मन शे खजिता सुजुंगा नोटेंशन प्रोडक्ट्स उसर दुमर मीने लारे नोटेंशन प्रोडक्ट्स यूज करवाए सो थैंक यू सो मच डेरा मन नसी खुशहाल शी कदर मन शी इज्जत मन शी यो जहान मन न खजी डेरा डेरा मन नसी। ओके जी द सितमगर नवावड़ा ये सम थ्रूरी द सितमगर गने नवावड़े दे नवावड़ा खत दे नवावड़ा शादक कर

हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाएं। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और

0: बीमारी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
1: चेहरे का निखार जैसे चांदनी रात, खालिस हेल्दी।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Radio Pegam 97.4 Pahadpur Global FM 91 Dera Ismail Khan and Radio Aman 88.4 Tang. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान के। जी जनाब, केसन वो कंपनी है जो आपके लिए काम कर रही है, आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बना रही है, आपके खूबसूरत

जी जनाब, दोपहर के 4 बज चुके हैं और 4:06-7 हो जाते हैं मेरे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। 3 स्टेशन एक साथ होते हैं तो तीनों को लाइन अप करते हुए जनाब थोड़ा सा टाइम लग जाता है और तीनों स्टेशन से कम्युनिकेशन करते हुए ठीक है जनाब थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कभी किसी चैनल के ऊपर डिले हो रहा होता है। तो आज इस वक्त जो है डेयर इस्माइल खान के लोग हमें लाइव नहीं सुन पा रहे तो वजह से जो है 6-7 जो है हमारे डिले हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं क्योंकि तीनों स्टेशन को लाइन अप करना होता है। एनीहाउ जनाब 4 बज चुके हैं और 4 बजते ही जनाब आप लोगों की खिदमत में हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं जो कि केसन का टी टाइम शो। टी टाइम शो का मतलब है चाय का वक्त जी जनाब, और चाय गर्मियों में तो इतनी अच्छी नहीं लगती लेकिन जब गर्मियों के अंदर ऐसा मौसम आ जाए स्पेशली बारिश वगैरह आ जाए, क्योंकि जनाब बारिश का ताल्लुक जो है ना वो चाय के साथ बड़ा गहरा है और बारिश का ताल्लुक जो है यादों के साथ भी बहुत ही गहरा है। और सावन की बारिशें, सावन का महीना जब भी आता है जनाब तो बहुत सारे लोगों को माजी के अंदर लेके जाता है, बहुत सारे लोगों की मौसम अच्छा मौसम जो होता है ना वो मुस्तकबिल की फिक्र से आजाद करके आपको किसी और दुनिया में लेके जाता है। लेकिन आप इस बारिश को देखते हुए आपको बचपन भी माइंड के अंदर आ रहा होगा, कभी जो है वो छत के ऊपर जाके बारिश में नहाना है जनाब, गली में निकल जाना, सहन में नहाना है जनाब, और साथ साथ में जनाब वो कागज की किश्तियां बनाकर जी बिल्कुल जी सहन के अंदर छोड़ देना। यानी कि ये मौसम जो होता है बेसिकली जो सावन का मौसम होता है, बारिश जो होती है, बारिश की बूंदे, बारिश की जमीन पे पड़ने वाली बूंदे और फिर उनसे निकलने वाली खुशबू जो है जनाब महका देती है सबको और आपके मूड भी तरोताजा हो जाते हैं। तो जनाब सावन का महीना और बारिशों का महीना, जैसे कि कल भी आप लोगों को बताया था कि जनाब ये जो 10 दिन है, ये जो अशरा है बहुत ही जबरदस्त किस्म का ये अशरा चलेगा हमारे लिए, क्योंकि जनाब इसके अंदर 3-4 स्पेल हैं बारिशों के। ठीक है जनाब, 2 बारिशें जो है हम 21-22 दिन के अंदर जो है, यानी कि कल से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और कल की सुबह भी आप जब उठे होंगे तो बारिश का पानी जनाब आपके सहन के अंदर ठहरा हुआ बता रहा होगा कि जनाब बारिश हुई रात और आज सुबह भी। तो जनाब उम्मीद यही है, मौसम की पेशन गोई तो यही है कि जनाब 31 मार्च तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और गर्मी की जो तेजी थी, जो तरारी थी या तपिश थी वो खत्म हो गई है और मौसम खुशगवार हो गया, और खुशगवार मौसम का फायदा उठाइए जनाब, दूध से बनी हुई दूध पत्ती पीजिए, साथ में इलायची भी शामिल कीजिए, और अगर आपके घर में अवेलेबल है दूध के ऊपर बलाई तो वो कप में डाल के एंजॉय कीजिए। फिर बताइए कि ये इलायची और बलाई का मलाई का जो आपस में इम्तिजाज है उसने आपको कितना हाँ जी खूबसूरत बना दिया आपके लम्हों को, और इस सावन को और कितना हसीन बना दिया।

जी जनाब, मजा मुझे नहीं आ रहा कि डियर इस्माइल खान हमारे साथ जो है, हमारे न्यू प्रोडक्ट है और न्यू प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है और हमारे साथ इश्यूज जो है डियर इस्माइल खान में चल रहे हैं। तो भाई कौन ड्यूटी ऑफिसर हैं भाई, पहले से काइंडली अपने फेसबुक को, अपने कॉन्टेक्ट को ओके करके बैठा करें, फिर शो के दौरान आप लोगों के मैसेजेस आते हैं और मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, मेरी भी जो है तवज्जो कभी किधर चली जाती है, कभी किधर चली जाती है। तो काइंडली जो है, जो भी ड्यूटी ऑफिसर हैं भाई, टाइमली मैं डियर इस्माइल खान से मुखातिब हूँ। ठीक है जनाब, टाइमली हमें ऑन एयर कर दिया करें। हमारे लिसनर डियर इस्माइल खान में जो है वो भी इंतजार में बैठे होंगे कि जैसे ही 4 बजते हैं तो उनका अपना फेवरेट प्रोग्राम किसन टी टाइम शुरू होते हैं। एनीहाउ देखते हैं क्या चलता है आगे। ठीक है जनाब, हम लाइव हो पाते हैं इस घंटे के दौरान डियर इस्माइल खान में या नहीं हो पाते। सामिन इकराम, केसन नेचुरल पाकिस्तान, भरपूर जिंदगी का ताल्लुक जो है, खूबसूरत जिंदगी का ताल्लुक जो है वो सेहत के साथ होता है, और इसलिए कहते हैं कि सेहत है तो जिंदगी है। हाँ जी, आप जान है तो जहान है, क्या समझे।

जी जनाब, कल आप लोगों के साथ बहुत सारी डिस्कशन हुई हमारी कि इंसान, बहुत सारे लोग हमारे माशरे के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर कमजोर क्यों रह जाते हैं। जिस्मानी कमजोरी, जहनी कमजोरी, असाबी कमजोरी का सामना उनको क्यों करना पड़ता है, वो आपके साथ कल हमने बड़ा डीपली जो मैंने आपको डिस्कस किया है कि कौन सी गिजाएं हैं जो आपकी गिजा के अंदर, रोजाना की आपकी जो गिजा है उसके अंदर शामिल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आप कमजोर रह जाते हैं। सामने के हम जैसे ही कोई कमजोर होता है, चाहे वो उम्र के आखिरी हिस्से में हो, 50-60 को क्रॉस कर चुका हो और उसे मुख्तलिफ किस्म की कमजोरियों का सामना आन पड़ा हो, ठीक है जनाब, उसमें हड्डियों की कमजोरी है, उसमें पट्ठों की कमजोरी है, उसमें जिस्मानी कमजोरी है, उसमें दिमागी कमजोरी है, असाबी कमजोरी है, सारी कमजोरियां एक साथ हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो है अपनी लाइफ के मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरते हुए, फेजेस से गुजरते हुए भी कमजोरी का उनको सामना होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, ठीक है जनाब, और रातों को देर देर तक पढ़ना, और फिर उनकी जो खुराक होती है वो उस लेवल की नहीं होती, यानी कि वो जितनी एनर्जी जला रहे होते हैं ना, जितनी एनर्जी, यानी कि जलाने का मकसद ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, बैठा है, स्टडी कर रहा है, तो वो ऐसे स्टडी नहीं कर रहा है, वो अपने जिस्म, जैसे हम मोटरसाइकिल पर या गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो कुछ जलता है तभी तो हम आगे चलते हैं ना, लेकिन अब डीजल है या पेट्रोल है, वो जलेगा तभी उसके अंदर एनर्जी आएगी। गाड़ी है, बाइक है, बड़ी गाड़ियां, जो चीज भी है, यानी कि ये फ्यूल होता है ना, फ्यूल जलता है तभी जाके जिंदगी आगे चलती है। इंसान का भी इसी तरीके से है, ठीक है ना, इंसान के अंदर जो एनर्जी है, जो हम चीजें खाते हैं, वो एनर्जी की सूरत में, एटीपीस की सूरत में आपकी बॉडी में मौजूद होती है, और वो काम करने के लिए, यानी कि ये ताकत आपके लिए मौजूद होती है, आप काम करते हैं, ठीक है जनाब, काम करते हैं तो वो आपकी तवानाई जो होती है वो सर्फ होती है, ठीक है जनाब। और अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि आपके पास एटीपीस तो आपके पास कैलोरीज तो कम है, लेकिन आप उसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी कि आप पूरी रात पढ़ने के लिए बैठते हैं, या आप कोई काम ऐसे करते हैं कि आप अपनी खुराक से ज्यादा काम करते हैं, यानी कि आपके पास जितना फ्यूल मौजूद है आपके बॉडी के अंदर, जितनी एनर्जी पैदा करने के लिए, एनर्जी यूज करने की आपके पास कैपेसिटी है, आप उससे ज्यादा जब काम करते हैं तो कमजोरी आपके जिस्म का हिस्सा बनना शुरू हो जाती है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर कैपेसिटी नहीं है इतनी, ठीक है जनाब, आपकी खुराक इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, आप ज्यादा जो है काम कर रहे हैं, हालांकि एनर्जी आपके अंदर उतनी नहीं है, तो फिर आपको कमजोरी का सामना रहता है। बहुत सारी वजूहात कमजोरी की और भी बहुत सारी होती है, ठीक है जनाब, लेकिन ऐसी सूरत हाल में अक्सर हम लोग क्या करते हैं जनाब, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं जनाब हमारे अम्मी अब्बू हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ताया ताई हैं, इनको भाई ताकत वाली ड्रिप लगाते हैं। अच्छा जी, मैं नहीं कहता कि ताकत वाली ड्रिप नहीं लगानी चाहिए, मैं आज आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ कि भाई ये जो ताकत की ड्रिपें होती हैं, ये ताकत के इंजेक्शन होते हैं, ये ताकत के सिरप होते हैं, ये ताकत की गोलियां होती है, बेसिकली इन सब का काम क्या होता है, इनके अंदर होता क्या है, मैं आपको ये कहानी आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि ताकत के नैरोबियान आपको इंजेक्शन मिलते हैं, मिथाइल कोबालामीन, मैथिकोबाल के नाम से आपको इंजेक्शन मिलते हैं, मल्टीबियोंटा ये एक इंजेक्शन होता है, ठीक है जनाब, इसके अंदर, इसके अलावा ऑस्नेट डी कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं, कैल्शियम पी सिरप है, इसी तरीके से लाइसोवेट सिरप है, इसी तरीके से लेडरप्लेक्स, ये सारी चीजें जो है इनके अंदर होता क्या है कि आपके जिस्म के अंदर एकदम से जान आ जाती है। तो जनाब ये जितने भी ताकत की चीजें हैं, चाहे आप ड्रिप लगाएं, चाहे आप इंजेक्शन लगाएं, चाहे आप ताकत की गोलियां खाएं, चाहे आप ताकत के सिरप पिए, चाहे आप ताकत के कैप्सूल खाएं, उन सब के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, ठीक है जनाब, इन सब के अंदर क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, और ये जब आप पीते हैं, लेते हैं, खाते हैं, तो वही विटामिन्स जो है आपके बॉडी के अंदर पहुंचकर आपको जो है एनर्जेटिक कर देते हैं, आपकी कमजोरी को खत्म कर देते हैं, आपकी थकान को खत्म कर देते हैं, आपकी सुस्ती को खत्म कर देते हैं, लेकिन होता क्या है इनके अंदर, इनके अंदर विटामिन्स होते हैं, इनके अंदर मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से विटामिन्स जो आपको सेहतमंद रखते हैं, जो आपके सेहत को बनाते हैं।

जी जनाब, ये विटामिन जब आपके जिस्म में जाते हैं तो जान से आ जाती है। बुखार में आपने एक डेढ़ महीना गुजार लिया, हफ्ता गुजार लिया, कमजोरी नकाहत आ जाती है, लेकिन जब वो आप उन चीजों का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो ये विटामिन आपके खुलियात को बना देते हैं, नए खुलियात बनते हैं और मेटाबॉलिज्म आपका सही होता है और फिर से आप सेहतमंद हो जाते हैं। अब कौन से विटामिन होते हैं जो आपको लेने चाहिए जिससे आपकी कमजोरी खत्म हो जाती है? तो प्रायोरिटी के ऊपर नंबर वन जो विटामिन फैमिली है ना, वो बी कम्प्लेक्स फैमिली है, B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है जनाब। इसको कहा जाता है बी कम्प्लेक्स, ठीक है जनाब। आप देखें विटामिन ई सिर्फ विटामिन ई होता है, विटामिन सी सिर्फ विटामिन सी होता है, विटामिन डी सिर्फ विटामिन डी होता है, विटामिन ए सिर्फ विटामिन ए होता है, विटामिन के सिर्फ विटामिन के होते हैं, उनके साथ K1, K2 नहीं है, C1, C2 नहीं है, D1, D2 नहीं है, कुछ भी नहीं होता उनके साथ। वो चूंकि अलोन है तो उनको कम्प्लेक्स नहीं कहा जाता। लेकिन ये जो फैमिली है विटामिन B3 की, ये बहुत ही काबिल फैमिली है, B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है जनाब। और ये जब आप लेते हैं तो आपके जिस्म के अंदर ताकत आ जाती है। अब वो चीजें, ठीक है जनाब, ये बहुत जरूरी है आपके जिस्म को ताकत देने के लिए। दूसरा, विटामिन डी बहुत जरूरी है, कैल्शियम बहुत जरूरी है, आयरन बहुत जरूरी है, विटामिन के बहुत जरूरी है, और मिनरल्स में मैग्नीशियम जो है ये बहुत जरूरी है। ये चीजें जब आपको मिलती हैं तो आपकी सेहत बन जाती है, आपके जिस्म के ऊपर गोश्त आने लगता है और आप फिर से मोटे ताजे यानी कि सेहतमंद होने लगते हैं। तो केसर नेचुरल पाकिस्तान ने ये जो आप लोगों के लिए ताकत प्लस फार्मूला बनाया है, केसर ताकत प्लस।

0: ये जो हमारी प्रोडक्ट है केसन ताकत प्लस, ये बेसिकली इन्हीं अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है जो आपको ताकत देंगे। वो जो आप इंजेक्शन ड्रिप या सिरप या कैप्सूल या गोलियों की सूरत में लेते हैं, वो सिंथेटिकली केमिकलाइज तरीके से फार्मा इंडस्ट्री के थ्रू आप तक चीजें पहुंचती हैं जो डॉक्टर हजरत आपके लिए लिखते हैं। लेकिन उसमें भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ कंपनियां ऑर्गेनिक तरीके से भी बनाती हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ तरीके से बनाती हैं, ठीक है जनाब। लेकिन केसन ने आपको ये जो सेहत का फार्मूला दिया है, वही चीजें, वही विटामिन, वही मिनरल्स जो आप दूसरे तरीकों से लेते हैं, हम आपको केसन के इस ताकत प्लस फार्मूले के अंदर दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको बी कम्प्लेक्स होल फैमिली, यानी कि जो अज्जा इसके अंदर शामिल है ना, अज्जा, ठीक है जनाब, उनके अंदर यही चीजें पाई जाती हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ताकत की जितनी भी चीजें होते हैं, ड्रिप हो गई, इंजेक्शन हो गए, गोलियां हो गई, टैबलेट हो गई, ये जो आप लगवाते हैं, ठीक है जनाब, उनके अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया। और केसन का जो ताकत प्लस है उसके अंदर भी यही चीजें हैं ताकत वाली, ठीक है ना। जब आप इसको लेंगे तो आपके अंदर ऐसे ही ताकत आएगी, लेकिन किस तरीके से, वो हम आपको जड़ी बूटियों मगजियात की सूरत में दे रहे हैं। जो नेचुरल चीजें आप इनटेक करेंगे उसके वही बेनिफिट्स, कमजोरी को खत्म करने वाले वही आपको मिलेंगे। जैसे कि इसके अंदर अश्वगंधा है, एक जड़ी बूटी है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए, सी और बी पाया जाता है। विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो जो लोग, जो फीमेल हमारी ये प्रोडक्ट यूज करेंगी ना, जिसने भी 3 महीने, जिसको बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिस्म के ऊपर गोश्त नहीं है, हड्डियां हैं, तो जो भी फीमेल, जो भी लड़की हमारा ये फार्मूला केसन ताकत प्लस फार्मूला लेंगे, तो उसकी स्किन भी प्यारी होगी, क्योंकि विटामिन सी इसके अंदर मौजूद है। क्रीमों के अंदर भी विटामिन सी होता है, फेस वॉशेस के अंदर भी विटामिन सी होता है। तो ये जब आप इंटरनली लेंगे इसको, तो ये और ज्यादा असरअंदाज होगी। इसके अलावा जनाब, सफेद मूसली जो है, स्टेमिना को और आपकी पावर को बढ़ाने के लिए एक जड़ी बूटी जो शामिल की गई, इसके अंदर विटामिन ई, B1 और B2 पाया जाता है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन के अंदर, सिरप के अंदर, गोलियों के अंदर यही विटामिन होते हैं, B1, B2, B6, B12, विटामिन सी, AD, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें। तो उसी तरीके से जो बादाम इसके अंदर शामिल है, तो उसमें विटामिन ई, B2 और B3 पाया जाता है। पिस्ता जो है उसके अंदर B6, ई, विटामिन ई और विटामिन के पाया जाता है, ठीक है जनाब। इसके अलावा जो काजू है उसके अंदर विटामिन ई, के, B1 और B6 पाया जाता है, ठीक है जनाब। तो जितनी चीजें आपको चाहिए वो इसके अंदर मौजूद हैं हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर। इवन के मैग्नीशियम भी हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर किसी न किसी सूरत में मौजूद है। और मैग्नीशियम जो बड़े फायदे हैं मैग्नीशियम के, दिमाग और नींद को बेहतर बनाने के लिए है, हड्डियों के लिए, पट्ठों के लिए बहुत जबरदस्त होता है, ठीक है जनाब। और दिल और खून की रवानी के लिए बहुत जबरदस्त होता है, हाजमा और एनर्जी के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जनाब, केसन के ताकत प्लस फार्मूले के अंदर जो बादाम है, काजू है, पिस्ता है, ठीक है जनाब, इन तमाम चीजों के अंदर जो है मैग्नीशियम पाया जाता है कुदरती तौर पर। तो भाई, इस वक्त जो ट्रेंडिंग चीजें चल रही हैं, अगर आप उस इंडस्ट्री की तरफ जाएं जो लोगों को सेहत की प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं, तो न्यूट्री फैक्टर एक कंपनी है, आप यकीन कीजिए उनके आप चीजें उठा के देख लें, इतनी महंगी महंगी है यही चीजें, हम जो आपको इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, उनके आप देखेंगे कि मैग्नीशियम की जो है आपको वो 2000 से ऊपर की बोतल मिल रही होती है। तो हमने नेचुरल वे पर आप लोगों के लिए जनाब, डेरा के लोग, टांग के लोग एंड पहाड़पुर के लोग, आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी प्रोडक्ट बनाई है। जिस तरीके से हमने बड़ी इज्जत कमाई है, बड़ा नाम कमाया है शिफाए दर्द के अंदर, और लोग हमें पिक्चर सेंड कर रहे होते हैं, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई कहां से, और कह रहा होता है भाई ये आपके पास होता है ऑयल, भाई ये वाला ऑयल हमारे रिलेटिव रहते हैं डेरा में, हमारे रिलेटिव रहते हैं पहाड़पुर में, उन्होंने इस्तेमाल किया, बहुत जबरदस्त है, ये हमें 2 बोतल भेज दी। यानी कि पूरे पाकिस्तान के हमारी कंपनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज तक हमने जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बाहर भेजी है ना बड़े शहरों में, वो हमारा ऑयल शैम्पू और ये शिफाए दर्द ऑयल है, ठीक है जनाब। ये सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। और मैं, आप आज भी एक बंदे का जो है ऑर्डर आया हुआ था यहाँ से तेमरगरा से, वो 2021 से हमारे प्रोडक्ट भाई इस्तेमाल कर रहे हैं और आज भी उनका जो है कुछ 4-5 हजार का ऑर्डर था और उनके हर वक्त ऑयल शैम्पू, आज उन्होंने ग्लूटा के भी साथ में ऑर्डर दिया और साथ में नाइट जफरानी क्रीम का भी ऑर्डर जा रहा था, लेकिन 2021 की इतनी बड़ी स्टोरी है हमारी उनके साथ और ये एतमाद की स्टोरी होती है, एतमाद की कहानी होती है कि जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और बरसों से ट्रस्ट कर रहे होते हैं। तो सामिन किराम, जिस तरह आप लोगों ने मोहब्बत दी हमें केसन शिफा दर्द के ऊपर और हमने एक ऐसा आयल बनाकर दिया आपको जो कि बहुत तेजी के साथ आपके पट्टों के अंदर जज्ब होता है। ये खूबी है जो शुतुरमुर्ग का तेल है ना, उसकी ये खूबी है कि वो आपकी स्किन की तह के ऊपर ऊपर नहीं रहता है, वो घुस जाता है आपकी स्किन के अंदर, क्योंकि इस ऑयल की बहुत ज्यादा मुमासलत है इंसानी ऑयल के साथ जो हमारे जिस्म के अंदर पाया जाता है। तो भाई बहन है जनाब ये दोनों, तो बहुत जल्दी मिलाप हो जाता है इनका और स्किन के अंदर जाकर जो है मुतासर जगह पर जाकर क्या करता है जनाब, आपके पट्टों का जो खिंचाव होता है ना, ये खिंचाव की वजह से बूढ़े लोगों को उठने बैठने में मसला होता है, बुजुर्गों को क्यों मसला होता है, पट्टों का खिंचाव होता है, ठीक है जनाब। तो ये जो ऑयल है केसर शिफा दर्द की, मैं बात कर रहा था ताकत फॉर्मूले की लेकिन बात दूसरी तरफ चली गई है कि कितनी प्यारा ऑयल हमने आपको दिया जो कि जिस्म में जाकर उनको क्या करता है, सख्ती जो होती है ना पट्टों की खत्म कर देता है, जिसकी वजह से हरकत आसानी होती है, खासतौर पर उम्र रसीदा अफराद के अंदर ये मामला होता है, जल्दी के साथ जज्ब होकर अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचता है। हम कहते हैं ना कि केसन शिफा दर्द ऑयल जो है वो जड़ से बीमारी का खात्मा करता है। तो कैसे करता है, जब तक कोई चीज जड़ तक नहीं पहुंचेगी वो खात्मा कैसे करेगी। यही वजह है कि हम स्लोगन लगाते हैं कि आपके आपको दर्द से जो आराम मिलेगा ना वो जड़ से, ठीक है, जब जड़ से आपको आराम मिलेगा। और ये उस वक्त हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे ऑयल के अंदर ये खूबी है कि वो पट्टों के अंदर घुस कर वहां पहुंचता है जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर प्रॉब्लम होता है वहीं पहुंचकर आपके मसले का हल करता है। तो भाई वो मैं बात कर रहा था कि इतना प्यारा ऑयल हमने आपको बना कर दिया, इतना प्यारा जबरदस्त हाजमा कंट्रोल सिरप हमने आपको बना कर दिया, इतनी प्यारी फक्की जो आपका वजन कम करती है, केसन वेट कम पेट कम बना कर दी,
1: जिसमें आए
0: अब वो चीज दे दी आपको जो आपकी जिस्म के अंदर जान डालेगी।

0: कमजोरी को कर दो बाय बाय। केसन ताकत प्लस।
1: जी जनाब, केसन ताकत प्लस और कमजोरी को अलविदा कहना है आपने, और बहुत बर्दाश्त कर ली आपके जिस्म ने ढेर सारी कमजोरियों को, सुस्तियों को। तो अब जनाब वो वक्त आ गया है कि जब आप केसन नेचुरल पाकिस्तान की ये नेचुरल प्रोडक्ट जिसका नाम है केसन ताकत प्लस, हर्बल सप्लीमेंट है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, न्यूट्री सप्लीमेंट है, और सादा अल्फाज में आपको ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म का पाउडर की सूरत में है। ठीक है जनाब, एक जार है, उस जार के अंदर ये पाउडर है जिसको हम सप्लीमेंट कहते हैं। बहुत सारे लोग इसको फक्की भी बोलेंगे, है जनाब, आसान लफ्ज है ना, लेकिन फक्की वो होती है सामिन किराम जो मुकम्मल तौर पर जो है वो जड़ी बूटी हो जिसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मगजियात हैं, इसके अंदर ड्राई फ्रूट शामिल है, तो ये सप्लीमेंट कहलाता है ऐसी प्रोडक्ट। क्योंकि जड़ी बूटियां जो होती हैं वो अक्सर जो है मसाइल के लिए होते हैं, एनर्जी के लिए बहुत कम होती हैं, लेकिन इसके अंदर चूंकि एनर्जी की भी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं तो इसको हम केसन जो है ताकत प्लस सप्लीमेंट कहते हैं। केसन ताकत भी इसको बोल सकते हैं, केसन ताकत फार्मूला। ठीक है जनाब, तो केसन ताकत प्लस पाउडर की सूरत में है, बहुत प्यारी इसकी खुशबू, आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे चम्मच निकालकर मुंह में डालेंगे तो मजा आ जाता है। ठीक है जनाब, सूखा भी खा सकते हैं, लेकिन सूखा खाना नहीं है आपने, क्योंकि हमने आपको एक वे बताया, और वे ये है कि आपने एक गिलास दूध के अंदर इसके दो चम्मच डालने हैं, उनको मिक्स करके फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसके दो तरीकेकार हैं, एक चम्मच आप सुबह ले लें आधे गिलास के साथ, और एक चम्मच रात को ले लें, या फिर आपको दो, आप दोनों चम्मच मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, दोनों चम्मच आप रात को सोने के बाद भी ले सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज बहुत जबरदस्त हैं, इससे रात को इस्तेमाल करने से ये बेनिफिट होगा कि जो है बहुत सुकून वाली नींद आपको आएगी। ठीक है जनाब, बहुत मजे वाली नींद आएगी। सिर्फ ताकत देना काम नहीं है इस प्रोडक्ट का, ये आपके ओवरऑल हेल्थ के प्रॉब्लम को, आपके मैदे के मसाइल को भी ये हल करेगा। जैसे कल मैंने आपको बताया था केसन ताकत प्लस जो फार्मूला है तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है, इसके अंदर 13 अज्जा हैं। ठीक है जनाब, और अगर तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं तो चार चार अज्जा अपना अपना काम करेंगे। एक हिस्सा जो है वो इसका मुश्तमिल है ड्राई फ्रूट्स के ऊपर, जैसे कि बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। ठीक है जनाब, जो कि फैट्स हैं, फैट्स बहुत जरूरी होते हैं आपके जिस्म को बढ़ाने के लिए। जब फैट्स को आप लेते हैं तो आपका जिस्म भरना शुरू हो जाता है, तो ये प्राइमरी चीज है इसकी, इसको हमने ऐड किया। दूसरा, इसके अंदर चार किस्म की बहुत ही ताकत बख्श जड़ी बूटियां हैं। ठीक है जनाब, और आपको दो तीन दिन के इस्तेमाल से ही आपको जिस्म के अंदर एनर्जी महसूस होगी, आपके कमर का दर्द खत्म होगा, आपके पट्टों का दर्द खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके जिस्म

अंदर एक एनर्जी, ये वाजे तौर पर आपको बताएगी कि आपने कोई ताकत वाली चीज कोई इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तीसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर वो अज़ा शामिल हैं जो आपको भूख लगाएंगे, जो आपकी भूख बढ़ाएंगे, जो आपके निजामे इन्हज़ाम को बेहतरी की तरफ लेकर आएंगे, और बहुत ही प्लेटेबल, बहुत ही प्लेजेंट किस्म का, बहुत ही प्यारा और मीठा इसका जायका है। इसके अंदर हल्की सी मिठास भी शामिल है, साथ में वनीला फ्लेवर और इलायची खुशबू है जो आपको इतना मजा देगी कि आप कहेंगे कि यार खलील भाई ने एक गिलास क्यों कहा है, ये तो हर एक घंटे बाद पीना चाहिए। है जनाब, इतना इफेक्टिव और इतना प्लेटेबल किस्म का, प्लेजेंट किस्म का इसका फ्लेवर है कि आप खुद बोलेंगे कि भाई ये तो मुझे जो है हर रोज, जो है हर रोज क्या, हर घंटे बाद इसको पीना चाहिए। तो मजेदार जायके के साथ ये आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। वो लोग जिनको जिस्मानी कमजोरी है, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, यंग लड़की हैं, मैरिड हैं या फिर बुजुर्ग हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में जो इसकी खुराक है वो एक चम्मच डेली है, और वो भी 12 साल से ऊपर, अगर आपके बच्चे 12 साल से ऊपर हैं तो इस ताकत प्लस फार्मूले को जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और हमें आपने बताना है कि जनाब ये इसकी कीमत है 500 रुपए। ठीक है जनाब, 500 रुपए का ये ताकत प्लस फार्मूला है, और एक दफा फिर से बताता चलूं। ठीक है जनाब, दूध के साथ इसको आपने इस्तेमाल करना है।

0: जिंदगी।
1: लेकिन आप ताकत से भरपूर जिंदगी हारे की ख्वाहिश होती है क्योंकि ताकत है तो जनाब बाकी दुनिया जहां के काम है। अगर जिस्म में कमजोरी है, नकाहत है, तो फिर जाहिरी बात है कि आप किसी काम काज के काबिल भी नहीं होते हैं। आप ना काम कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं। तो प्रायोरिटी जो होती है वो सेहत होती है जनाब। और अगर आपकी सेहत अच्छी है तो फिर आप कहीं नहीं मार खाते। और अगर आपकी अच्छी है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कमी बेशी है, कमजोरी है, सुस्ती है, काहली है, तो किशन का ताकत प्लस फार्मूला जरूर एक मरतबा ट्राई कीजिएगा, पीजिएगा, लीजिएगा और कुछ अर्सा इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बनाइएगा और फिर बताइएगा कि किशन ने कितना ताकतवर फार्मूला तैयार करके आप लोगों की खिदमत में पेश किया है।
0: जिसमें आए नहीं
1: आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर आप लोगों के पास है। बहुत सारे लोग गिला करते हैं कि मैं नंबर नहीं बताता हूँ। तो जनाब नंबर हमारा 0344-936-3366, ठीक है जनाब, 0344-936-3366। इसी नंबर के ऊपर कॉल और एसएमएस आप कर सकते हैं। और हमारा ये ताकत प्लस फार्मूला जो है, सप्लीमेंट जो है, पहाड़पुर में आप हासिल कर सकते हैं। अवेस ट्रेडर्स, ठीक है जनाब, अवेस ट्रेडर्स जो है राहत घी एजेंसी है, जहां पर डाकखाना है, ठीक है जनाब। आप वहां पर जाएंगे तो आपको हमारी प्रोडक्ट मिलेगी, वहां से हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, क्या हाल
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शबीर उस्ताद सनल केज कुल मौजूद इनसे।
2: जी जी, क्या है सर, खलिया थे सर
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तो शुक्र है, करम है, मौसम चंगा ठीक है सही तुम्हारे पास भी?
2: भाई अल्लाह की बड़ी मेहरबानी थी, अल्लाह तौर की मेहरबानी करे। गर्मी का जो रहा जाइए ना, सर्दी जो इससे आदि आज अल्लाह पाक में रात जो रहे ना नारायण का काम भी याद आ गई।
1: सा कोई याद आ गई कि भाई इन्हें को इवें मौसम तो थी होता है। अल्लाह पाक कायम रखे पेशन कोई तहे 31 जुलाई तक मौसम इवें चंगा रासी तक अल्लाह को उम्मीद रखे ने कि मौसम चंगा रासी।
2: अल्लाह पाक जो है ना खैर चले जी, बारिश है इतनी है ना, सैलाब आ रहे हैं तो लोग औखी चीजें सियालकोट बगलपुर या गुजरान साइड भी तो बड़ी ज्यादा काफी हद को ज्यादा बारिश चाहिए। अल्लाह पाक उन्होंने कोई इंतजाम नहीं रखे।
1: बिल्कुल मानसून हमेशा खतरनाक भी होंगे सही, ठीक है सही, उनकी वजह को नशे भी इलाके से रिहा भाव है तो उस तरह से गाल करेंगे पैसे अल्लाह पाक अपना करम वाला मामला फरमावे। ते सही तुहाडा बंदा कोई सारो नहीं पहुंचा, ते सारा कोई बंदा उनते नहीं पहुंचा कि तुहाको असा ताकत प्लस पिलाऊंगा
2: इंशाल्लाह। बच्ची और बड़ी कमजोर है, बड़ी ताकत वाले सीरा पिलाए से खाद खुराक दूध दीता से, लेकिन सिंगल पकड़ी, लेकिन अलहमदुल्ला भाई ऐसा दिखता है उसको अगर खांदी पीदी लाई थोड़ी बारी रोटी खांदी हूं तो इतनी हाजमा कंट्रोल चमक हिंसा था रोटी पूरी नहीं की अलहमदुल्लाह। त्रै रोटी अंदर अद्धी रोटी नशे खानी है, लेकिन त्रै रोटी कर दे पांच दिन अंदर यकीन कर कसम का याद अपना पांच दिन अंदर अंदर रिजल्ट ही दस है और उसे तो गोश्त चेहरा बिल्कुल पांच दिन बाद चीजें।
1: चलो जी जी बिल्कुल, ऐसे ही ताकत से भरपूर हमारा ये ताकत प्लस, जैसे कि संजीव मैं इन्होंने लोगों को ये गल करना बैठा कि इनको पहले सारी कंपनी जिरे सेहत जिरे प्रोडक्ट इन बड़ी कामयाब है माशाला, ठीक है
2: बिल्कुल
1: जी। पेट कम शिफाए दर्द, हाजमा कंट्रोल सिरप, ठीक है सही, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जेरे की बीमारियां वहां से इस्तेमाल थी ने। ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ज्यादा जिरेशिया ज्यादा ओ घिनन ओ सेहत दे मामलात आले होने ने। अगर सेहत दे मामलात च कंपनी सारी इतनी कामयाब है तो इयो वजह है कि ऐसा चौथी प्रोडक्ट भी सेहत दे हवाले नाल बढ़ाइए ते लोग मुतमईन इन सैटिस्फाइड इन ते जोग दर जोग गिंदे पैन ते इंशाल्लाह आवन अलियां दे जो आज दा फीडबैक भी शेयर करे से बहुत मेहरबानी सी तुम्हारी।
2: जी जी बाकी सारे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम
1: जनाब, सब सुनने वालों को सलाम हो गया। शुक्रिया
0: नई जिंदगी का शुरू
1: जी। आप अपनी जिंदगी के अंदर अगर आप भी कमजोर सी कमजोरियों भरी आपकी जिंदगी है तो जरूर लेके आ सकते हैं, अपनी जिंदगी को खुशियों से भरपूर कर सकते हैं जब आप सेहतमंद होंगे। केसन के और प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद हैं। ये मत समझिए क्या कि सिर्फ हम सेहत के हवाले से प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो है एक बहुत बड़ी रेंज है ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। फेस वॉशेस की बात करें या क्रीमों की या सोप्स की। एक कॉलर हमारे साथ हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: जी जनाब, जनाब अब्दुल हादी फ्रॉम टांक। हां जी, गरा शहबाज। कितने गरे हिंद नाल, कितने गरे हिंद तुहारे नाल, ना दसो मेरे को गरे, मैं गिनदा अंगलियां तेरे को।
3: तकरीबन 3000 खलील भाई,
1: टोटल 3 तो मैं को याद इन गरा शहबाज, गरा बलोच, गरा हयात, गरा बुढ़ा, 4 तो मैं को याद नहीं यार, की गाल कर।
3: गरा गुलदाद है करा,
1: गरा गुलदाद भी है पिया, यानी कि 5 गरे हिंद तुहारे नाल। एक गरे दे विच कितनी आबादी होंदी है? एक गरे दे
3: तकरीबन बहु आबादी होंगी खलील भाई,
1: लाख खान होंगी,
3: लाख
1: या घट होंगी?
3: नहीं लाख, लाख तो नहीं खलील भाई।
1: अच्छा, इनमें 30-40 हजार हिगरे दी आबादी होंगी उसी तकरीबन?
3: जी जी ये हो सी बात।
1: अच्छा, इनमें हो सी, यानी के 4 गरे हिंद तो 1.5 लाख, तकरीबन 1.5-2 लाख बंदा जो रहे गरां दे विच मौजूद है, जी सारी आवाज सुनते पे उसने टांग को छोड़ के अगर टांग को स्किप करने हैं तो इवें गाल से। सारे हवाले करके फैजान को, सलीम कटी खेल को, अली भाई को सारे हवाले करके आप है तो सकते टूर टूर चले पे
3: खलील भाई,
1: सिर्फ गालियां सारे सुनते पे कि भाई नवी शह बढ़ाई है। अच्छा जी,
3: मजा करे पे
1: एक नवी प्रोडक्ट बढ़ाई से ताको ताकत देवण वाली इंदी भी जरूरत है या इंदी जरूरत कोनी अस खाम खाते बना छोड़ी?
3: नहीं नहीं माशाल्लाह, चूल्हे में को आपे मजा नहीं करे
1: हैं,
3: लेकिन चूल्हा आदमी में को आपे नहीं पसंद
1: है। अच्छा नहीं पसंद, लेकिन ए कमजोर लोगों को जरा ना सेहतमंद बनावण दी ऐसा गाल करे ने पे कि ए प्रोडक्ट जरी है जरे कमजोर लोग इन उना दी कमजोरी दूर थी सी, जिवें छीने कोल सादिक बिरावत दे उना जान दे उना को कर छोड़ा कि भाई मेरे वास्ते शह बड़ी है, मैं ये गुलें दा बदाम कोई ताकत आला फार्मूला मिले सकू।
3: वाह
1: हां, तो ओ हुण मतलब आका दा मकसद है कि सिर्फ ए नहीं कि सारी कंपनी तुहाड़े वालों को सोना बनाने वास्ते तेल बड़ी वधी है या शैम्पू बड़ी पई है या स्किन को चिट्टा करने वास्ते क्रीम पे फेस वॉश या साबण, बल्कि असा तुहाड़ी सेहत दा भी ख्याल रखेंदे हैं। सही
3: बिल्कुल, कंपनी ये मजा करेंगे ना, हर शायद ख्याल रखे ना,
1: हर शायद ख्याल रखे, मोटे बंदा का भी ख्याल रखे, उन्हें को स्मार्ट बनावे, ते स्मार्ट जेरे बहु पतले ने उन्हें को थोड़ा सेहतमंद भी बनावे, ते नाल नाल खूबसूरती खूबसूरत बंदा होवे ते उंदी जिस्म में जान ना होवे तो खूबसूरती तो कोई फायदा है अब्दुल हादी?
3: कोई फायदा कोनी खलील,
1: कोई फायदा कोनी, ता असा ओ काम करेसु जेंदे नाल तुसा मुकम्मल सोने लगसो सही, क्योंकि प्यारा लगना तो सब का हक है। सारा नारा तो तुसा सुनाओ सी केसन दा?
3: बिल्कुल सुन दे रहा नहीं।
1: हां चलो ठीक है जी, बहुत मेहरबानी, तो कोई समझ आ गई है कि
3: भाई सलाम देना चाहने हैं, सलीम कटी खेल पी गया, फिजान पी गया, सादिक भाई जान पी गया, सारा सलाम देते हैं,
1: सारा को सलाम पी गया। ठीक है सर, मेहरबानी आके जनाब, ये थे हमारे साथ अब्दुल हादी और उनसे ज्यादा मैंने बात की, आपको पता होना चाहिए, हालांकि मैं चाय भी पी रहा हूँ।

0: कह लें कि घरेलू टोटके हैं या घरेलू नुस्खे हैं, बेहतर तो यह है कि अगर इन्होंने इनको महसूस हो रहा है ऐसा, तो कोशिश करें कि मिल लें दवाखाने ताकि इनकी सूरत हाल देख के और इसके मुताबिक इनको प्रॉपर उसका इलाज भी बताया जाए और इनको समझाया भी जाए।
1: चलें ठीक है। सो खवातीन हजरात, यू आर नाउ लिसनिंग टू रेडियो अमन 88.4 टांक। रेडियो अमन के साथ आप सब वाबस्ता हैं, सुन रहे हैं प्रोग्राम सेहत का पैगाम, जो कि अलशिफा दवाखाने के खसूसी ताउन से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और हकीम साहब कल बरोज जुमा सुबह 8 से शाम 4 तक अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस्ट ट्रैफिक प्वाइंट टांक सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप पाना जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम अनस भाई, क्या हाल है, खैरियत है?
1: अल्लाह का शुक्र है। मेरा भिरा कौन थे, कितों गाल करें दे पैवे?
2: मैं गरमे तो यूनस गाल करना थी, तीन फैक्ट्री है, सेट पास है, सर सर या
1: अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल बेहतरीन है। यूनस लाला क्या पूछना चाहते हैं हकीम साहब दे कोलो?
2: लाला यार ही मजूर करना ना,
1: ठीक है
2: यार ही मजूर
1: पेरां दे तलियां सड़ने, ठीक है यूनिस लाला, रेडियो सुनते रहो, हकीम साहब पुलिस दे बारे मशवरा कर रहे ने।
2: बड़ी
1: मेहरबानी, जी हकीम साहब, पेरों की तलियों का जलना
0: आगे भी ये तकरीबन देखा जाए तो एक आम सा मसला है,
1: ऐसी बात है हाँ।
0: और बहुत ज्यादा है। अब इसमें वजूहात आ जाती हैं कि बाज दफा मैदे की तेजाबियत से,
1: ऐसी बात है
0: हाँ। हाथों पैरों में से, खासकर पैरों की तलियों में से सेक निकलता है, बाज दफा मरीज ने अपना कोई चेक नहीं करवाया होता, कोई टेस्ट नहीं करवाया होता तो शुगर का भी सामने आ जाता है,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: उसकी वजह से भी सेक निकलता है। बाज दफा ये होता है कि असाबिक कमजोरी,
1: ठीक है।
0: अब ये काम क्योंकि इनका मुशक्कत वाला है, वजनी काम है, जोर वाला काम है, और दूसरा ये कि शायद हो सकता है कि अब इनकी सेहत कैसी है, उम्र कितनी है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, तो बाज दफा ये इसकी वजह से भी ऐसा होता है,
1: ऐसी बात है।
0: तो अगर ये या तो फिर प्रोग्राम के बाद तफसील से काम कर लें और या फिर कुछ वक्त निकाल के दवाखाने पे मिल लें, वो ज्यादा बेहतर होगा।
1: चलिए ठीक है, एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सो जी, आप सिर्फ आवाज हमारी सुन रही हैं, आवाज दे नहीं रही हैं। सो आप कभी अगर कोई सेहत के हवाले से सवाल है किसी मेरी बहन का, किसी मेरे भाई का, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319 55 23 404 पर या 0319552304 पर। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। 0963-511-488 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से सवाल पूछ सकते हैं। और कल बरोज जुमा सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्र ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप प्वाइंट अभी जारी रहेगा। तो आपका कोई भी सवाल है आप हकीम साहब से लाइव शो में कॉल एसएमएस के जरिए पूछ सकते हैं। नंबर एक मरतबा फिर मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए या मेरे साथ डायल करिएगा 0319-55-23-404 0319552304 पर या 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो एक मैसेज मेरे पास आया है, हकीम साहब कहते हैं कि अनस भाई आपको भी सलाम, हकीम साहब को भी सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब से पूछ कर दो कि मेरे भाई आपने जो है ना बड़ा सवाल को इंग्लिश आपने मिक्स किए हुए, तो हकीम साहब मेरे ख्याल में भाई कह रहे हैं कि हाथ कांपते हैं तो इनके बारे में बताओ, लेकिन एक कॉलर है हकीम साहब, सुन लेते हैं फिर आप इनको भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो तो जी आप भी सिर्फ जो है ना हमारी आवाज सुन रहे हैं। सो हकीम साहब, हाथों का कांपना, इसके बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे भाई को?
0: देखें ये राशे का मर्ज है और जाहिर है बाज दफा असाबी कमजोरी से और बाज दफा और भी कई वजूहत हो सकती हैं, उम्र का मसला, जिस्मानी, तो अब चीज ये है कि इसका इलाज तो प्रॉपर मौजूद है
1: सी बात
0: और जैसे जैसे अब आगे मौसम ठंडा होता जा रहा है उसमें इसका इलाज ज्यादा कारगर रहता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसकी जो डोज है या खुराक है वो थोड़े सा गर्म मिजाज रखते हैं कि जो हमारे खून को मुतहरिक करें, पट्ठों में ताकत आए और उससे फिर यह है कि हमारे जो खून की सर्कुलेशन है वो ठीक हो।
1: ऐसी बात है।
0: लेकिन इनको एक मशवरा मेरा यही है कि आप कोशिश करें कि अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के तो दवाखाने पे मिल लें, ताकि आप फेस टू फेस एक तो मुलाकात भी हो जाएगी।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: आपका मर्ज, आपकी शख्सियत, हर चीज सामने होगी।
1: बिल्कुल ऐसी
0: तो मैं उस पर आपको बेहतर तौर पे कोई राय दे सकता।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल। आप आ सकते हैं जनाब अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी, हकीम साहब कल बरोज जुमा सुबह 8 से शाम 4 तक मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो इनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। सो एक और मैसेज मेरे पास आया हुआ है। हकीम साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, हकीम साहब कहते हैं कि अनस भाई मुझे खुश खांसी है, ने जो है ना बेहाल कर रखा है, बलगम नहीं है, बस जो है ना सिर्फ खांसी आती है खुश्क, और परहेज भी करती हूँ। खानदानी देसी नुस्खा इरशाद फरमाइएगा, दुआगो रहूंगी। उम्र 30 साल है, जमीला नाज और प्रोग्राम रोजाना आपको सुनती हूँ। जी हकीम साहब, बहन को क्या मशवरा देना चाहेंगे आप?
0: बहन हमारी का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो इतनी तवज्जो से प्रोग्राम सुनती हैं, और दूसरा कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो इनके लिए हो सके। देखिए कई चीजें हैं जो इसमें इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इनको एक छोटा सा नुस्खा बता देते हैं, वो भी काफी कारगर है।
1: ऐसी बात,
0: अगर उससे इनको फायदा पहुंचता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर उसमें कमी पेशी रहती है तो ऑनलाइन आके हमें कॉल के जरिए बता सकते हैं।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: कोई एक नुस्खे पे तिब नहीं खड़ी, तिब में हजारों किस्म के नुस्खे हैं।
1: ऐसी बात है।
0: हाँ, सिर्फ ये है कि मरीज की सही तशखीस हो जाए तो फिर नुस्खा कारगर होता है सारा।
1: ऐसी बात है।
0: आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तकरीबन अगर वजन ले थोड़ा ले लें, आप तकरीबन 10 ग्राम गुड़ ले लें और 10 ग्राम मलट्ठी ले लें पंसारी से। मलट्ठी के साथ आपने ये करना है कि पहले मलट्ठी को छुरी से छील लें।
1: ऐसी बात,
0: जैसे हम ये अरबी को या करेले को या आलू को छिलका छीलते हैं, आप उसका छिलका जो है ऊपर से छुरी से उतार लें और उसके बाद उसे किसी लोहे के हवन दस्ते में कूट लें।
1: ठीक है,
0: ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपने पंसारी से ही घरेलू हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी।
1: ठीक है,
0: आपने पंसारी से लेनी है जिसे साबत हल्दी कहते हैं या आंबा हल्दी कहते हैं। आप वो 10 ग्राम के करीब ले लें, उसको भी ला के आप कूट लें और इन तीनों चीजों को यकजा करके फिर कूटें। गुड़ की मदद से आप इसकी गोलियां बना लेंगे।
1: ठीक है,
0: तकरीबन चने के बराबर आप दो गोलियां तकरीबन हर घंटे बाद आप 2 गोलियां चूस सकते हैं, उसे चूसे इंशाल्लाह आपकी खांसी जो है वो भी खत्म होती चली जाएगी, और जो गले में खराश है या गले में आप तंगी महसूस करते हैं उसका जो लुबाव अंदर उतरेगा उससे आप उसमें भी काफी हद तक फर्क महसूस करेंगे। तो ये घरेलू नुस्खा है, छोटा है, सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो और काफी हद तक जो है अपने इस मर्ज को कंट्रोल भी कर।
1: बिल्कुल ऐसी बात है। तो बिल्कुल खवातीनो हजरात, आप अवस्था हैं रेडियो अमन के साथ, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं जो कि आप रोजाना बिल्कुल लाइव और बराह रास्त अपने पसंदीदा स्टेशन पर समाज फरमाते हैं। सो खवातीनो हजरात, इंशाल्लाह कल बरोज जुमा अलशिफा दवाखाना सारा दिन खुला रहेगा और सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपने क्लिनिक में मौजूद होंगे और मरीजों का चेकअप आना जारी रहेगा। सो आपका कोई भी मसला है आप आ सकते हैं अलशिफा दवाखाना में, अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्त ट्रैफिक पॉइंट, टांग सिटी। बिल्कुल सही, मजीद तफसीलात और मालूमात के लिए और लाइव प्रोग्राम में आप कॉल के लिए नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404, 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं और मोहतरम हकीम साहब से सवाल पूछ सकते हैं। और हकीम साहब एक और मैसेज मेरे पास आया है कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सलाम हो आपको भी, हकीम साहब को भी। सलाम कहते हैं कि शो में, अच्छा कह रही हैं कि मैंने कहा कि शो में हिस्सा कर लूं। चलें जी, बहुत मेहरबानी, आप हमारा शो सुन रही हैं इतने शौक से। کہتے ہیں کہ السلام علیکم انس بھائی, آپ کو بھی سلام, حکیم صاحب کو بھی سلام. اور کہتے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھیں کہ ٹانگ سے مہم ہمارے ساتھ ہے, کہتے ہیں کہ بھائی صبح پروگرام میں حکیم چاچو نے کلونچی کے بارے میں بتایا ہے, آپ ذرا پوچھ دیں صبح نہار منہ کتنے مقدار میں کلونچی لینی چاہیے. جی حکیم صاحب,
0: تھوڑی مقدار میں ہوتی ہے, آپ تقریباً 5 گرام یا اس سے کم آپ لے سکتے ہیں,
1: ٹھیک ہے,
0: اور نہار منہ لے لیں یا بعد میں لے لیں ناشتے کے, تو اس سے کوئی بہتر ہے. اور بازے تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کلونجی کا جو ہے وہ آئل نکلوا لیتے ہیں اور اس آئل کو بھی استعمال کرتے ہیں کھانوں میں ڈال کے. تو بہرحال آپ یہ ہے کہ اس کو لوز جو کھلی لگوا کے رکھ لیں اور تقریباً 2-3 گرام کے قریب آپ یعنی چائے کا چمچ کا ہاف حصہ لے لیں, تو آپ اس کو آدھی چمچ کو جو ہے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں.
1: بالکل ایسی بات ہے. سب بالکل جی, خواتین و حضرات, حکیم صاحب جو آپ کے نسخے آپ کو ٹوٹ کے آپ کو مشورہ دیا کرتے ہیں, تو بہت سارے بہنیں بھائی ایسے ہیں جو انہوں نے پین کاغذ ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں حکیم صاحب, وہ ساتھ ساتھ نوٹ کر لے ہوتے ہیں. اگر آپ نوٹ نہیں کر پاتے تو اسی شو کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ صبح سویرے سماعت فرماتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے نا نوٹ کر سکتے ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ, السلام علیکم. السلام علیکم. خیر وفیت ضرور سوکھ لکھوں جی نا. اچھی برور اچھی رسیا تھا ولی سر سواز تھا
2: جی جی میں حکیم سے مل کی معلومات رہتا ہوں کا مجھے مل گرہ دا 35-40 سال عمر بھئی شوگر مریض ہوا دا
1: سیدہ
2: کل بزے دے زیادی
1: اچھا رنگی
2: کب
1: بزے زیادی چلو سیدہ جی ریڈیو ور بھئی حکیم سے اپنے مشورہ کو دے بارے کے حکیم صاحب شوگر کا پیشنٹ ہے, 35-34 سال عمر ہے اور قبض رہتی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
0: دیکھیں قبض کا تو رہنا نہیں چاہیے اور ان کا معدہ ٹھیک رہنا چاہیے,
1: ایسی بات ہے,
0: کیونکہ معدے کی خرابی سے یا قبض کی حالت میں بعض دفعہ شوگر لیول میں فرق آتا ہے,
1: ایسی بات ہے,
0: شوگر بڑھ سکتی ہے کم بھی ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ اپنے معدے کا خیال رکھیں, جہاں تک رہا قبض کا اس کے لیے آپ جتنا ہو سکے زود ہضم چیزیں استعمال کریں تاکہ کھانا ہضم ہو اور اسی طرح جو ہے ریلیز بھی ہو سٹول. باقی قبض کے لیے بے شمار چیزیں ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو انجیر بھی لے سکتے ہیں, چاہیں تو قبض کشا دوا پنساریوں سے بھی جلاب ہلکا لائٹ جلاب مل جاتا ہے, اور اگر آپ چاہیں یا آپ سٹی میں ہیں تو آپ دوا خانے سے بھی قبض کے لیے جو ہماری اپنی بنی ہوئی
1: ادویات ہے آپ لے کے
0: وہ بھی آپ لے کے گولیاں جا سکتے ہیں, اس سے آپ کو تکلیف کے بغیر جو ہے پخانا وہ آ سکتا ہے.
1: ٹھیک ہے, سو بالکل جی, سامعین اکرام صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں چوکی الشفا دواخانہ کے خصوصی تعاون سے آپ کی خدمت میں بالکل لائف اور براہ راست پیش کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ کل بروز جمعہ حکیم سید مشکور احمد شاہ صاحب آپ کے شہر ٹانک میں موجود ہوں گے اور مریضوں کا جو چیک اپ آئینہ ہے وہ جاری رہے گا, آپ صبح 8 سے لے کر شام 4-5 بجے تک آ سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے چیک اپ آئینہ کرا سکتے ہیں. مزید تفصیلات و معلومات کے لیے اور پروگرام کے بعد بھی آپ اسی نمبر پر حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں, صبح کو بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, کیونکہ یہ جو ہے دواخانے کا ہیلپ لائن نمبر ہے, اس کے ذریعے آپ حکیم صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. مزید اس پروگرام میں بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0319-55-23-404 پر, 0319-55-23-404 یا 0963-511-488 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں اور حکیم صاحب سے سوال پوچھ سکتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہے حکیم صاحب.
0: جی جی,
1: کہتے ہیں کہ انس بھائی حکیم صاحب سے پوچھے کہ مجھے کچھ دنوں سے نا کانوں میں سیٹیاں اور سی سی کی آوازیں جو ہے نا وہ سنائی دیتی ہیں,
0: سائیں سائیں کی
1: آوازیں, بالکل, تو کہتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مشورہ دیں. کالر ہے حکیم صاحب, ان کی سن لیتے ہیں پھر ان کو بھی جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چی سو کو لکھم جی نبرو.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ریڈیو وار وہ یقین سے مشورہ کہ ابرو را چې ډیر زیات دی دوایګان استعمال کړي وي یو پھر چې چکر ولګوال شفا دواخانې ته ابرو را چې ډیر زیات لزونه دې کړي دي کنه ورته یو پھر چې چکر ولګوال شفا د یو پھر تی ورورا چکر ولا گوال شفا دوا خانے تھا بالکل جناب دا سے آر ودن کی دا سے خویان دے ورونا چے دا دردو مسئلی وی او ڈیر زیادی لجنے ورد کڑی وی مثلا دا ورور اس خبر وکڑا چے ما اسلام آباد پر ہمیں لجنہ کڑی دی دا سے اسلام آباد دا کراول پنڈی دا کا پشاور دا کلہور دا دا سے ڈیر خلق دی چے ڈیر زیادی لجنے کڑی دی خو بیا ہم چے کم آخو مسئلہ دا اغن حل کیے شی دا دردو حوالے سرا کستا سو دردو حوالے سرا مسائل وی او سو دردونا یو دا سے مسائل دی جناب کدی سرا مطلب ساسو المنز ہم نسو کولے اخوال عبادت ہم نسو کولے چے ڈیر ٹیم کھینو بیا چے گدے نسو چے مطلب ڈیر زیادی مسئلی وی مشرانو تا ہم کشرانو تا ہم او بالکل جناب ساسو ہم چیرے دا سے دردو حوالے سرا مسائل وی او انشاءاللہ دے وال ڈیر بہترین او گرنٹیڈ علاج موجود دیل شفا دوا خانے والے بالکل صحیح ایڈریس سر نوٹ کئی ان شاء اللہ سباب روز جمعہ حکیم صاحب و سباب مل اڑ بجو نوال دا مقام سلور بجے پورے بخپل کلینک کے موجود بھی او مریضان و چیک اپ آئینہ بکوی گران و آرویدن کو کستاسو دا دردو والے سر مسئلے بھی کستاسو چی دا مطلب چی دا مہدی مسئل دی کا بلڈ پریشر دا کا شوگر دا کا دا زڑم مسئل دی کا ایچ قسم ہمستاسو مسئلے بھی جناب ہر قسم بیماری تسلی بخش علاج ملاوی جی الشفا دواخانے باندھے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی سو جی حکیم صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ بھائی کو گھٹنوں کا درد ہے
0: جی اس کے لیے بہتر تو ہے کہ بھائی کوشش کریں کہ دواخانے پہ
1: ایسی بات ہے
0: کیونکہ گھٹنوں کا درد بغیر کسی ریزن کے نہیں ہے
1: ایسی بات ہے
0: اور دوسرا یہ ہے کہ مریض سامنے ہوتا ہے تو پھر اور کلیئر ہو جاتی ہے بات تو اس کے ساتھ ساتھ پٹھے کمزور ہیں میدا ہے ہر چیز کو کیونکہ جب علاج ہوتا ہے تو وہ خالی ایک کا نہیں وہ پورا مکمل طور پہ علاج ہوتا ہے
1: ایسی بات
0: تو کوشش کریں کہ اگر وقت نکلتا ہے تو دواخانے پہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک میں روزانہ ہوتا ہوں تو شوال مارکیٹ میں الشفا دواخانے پہ مجھ سے ملیں انشاءاللہ بھرپور کوشش ہوگی کہ جو کافی دیر سے پریشان ہیں تو اللہ پاک ان کو صحت دے
1: چلیں ٹھیک ہے حکیم صاحب وہ کانوں کے مسئلے کے بارے میں بتائیے
0: دیکھیے یہ بھی عام ہے اور اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ یار میں سائیں سائیں کی آوازیں آتی ہیں اور میں
1: سیٹیوں کی آوازیں
0: سیٹیوں کی آوازیں اور یہ محسوس ہوتا ہے حالانکہ دیکھا جائے تو یہ خود بھی کوئی بیماری نہیں ہے
1: اچھا یہ بیماری نہیں ہے
0: یہ بیماری نہیں ہے بلکہ یہ یا تو ہمارے اندرون کوئی مسئلہ ہے اور یا کوئی علامت ہے کسی اور وجہ کی تو اس کی پھر وہ نشاندہی کر رہا ہے ہمیں انڈیکیٹ دے رہا ہے تو اب اس کی وجوہات میں اگر جائیں گے تو پھر بعض دفعہ یہ بھی ہے پہلے کبھی تھا کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ پہلے وہ کان میں لیے پھرتے تھے کان صاف کرتے تھے
1: ابھی بھی ہے
0: ختم ہو گیا ٹرینڈ پہلے وہ تھا کہ وہ بازاروں میں گلیوں میں مل جاتے تھے وہ کان صاف کرتے تھے اور پھر اس سے کیونکہ ہمارے پاس تو اب اتنا ٹائم نہیں ہے
1: ایسی بات
0: کہ ہم اپنے کانوں کو ہی صاف کر لیں اس میں میل جمع ہو جاتا ہے جب میل جمع ہوگا کہہ لیں ہم نہاتے ہیں پانی کا بھی کچھ حصہ جاتا ہے کچھ صابن
1: ایسی بات
0: کچھ شیمپو تو چیز یہ ہے کہ جب یہ چیزیں وہاں جمتی ہیں تو پھر کانوں کے پردوں پہ دباؤ پڑ جاتا ہے
1: ایسی بات اچھا حکیم صاحب آپ کانوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کانوں میں ایک چپ چپی سی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ہم نے تو سنا ہے کہ یہ ہمارے کانوں کے لیے ضروری ہے چونکہ جو حشرات جاتے ہیں کیڑے مکوڑے اگر ہماری کان کی طرف جاتے ہیں سو یہ اس سے بچانے کے لیے حکیم صاحب
0: قدرت نے بال
1: ٹھیک ہے
0: بالوں کی افزائش جو کی ہے کانوں میں وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ چیزوں کو روکتے ہیں ٹھیک ہے بال اندر کان میں دیکھیں بعض لوگ نہیں کٹواتے ہیں وہ اندر بڑھتے ہیں کافی بال جو ہیں یہ کافی چیزوں کو رکاوٹ بنتے ہیں جو کہ کان میں جا سکتی ہے
1: ایسی بات ہے بالکل
0: تو اسی لحاظ سے ہے کہ جب یہ دباؤ میل گندگی پانی یہ چیزیں جمع ہوں گی تو پھر پردے پہ دباؤ پڑے گا
1: بالکل
0: پھر وہ سیٹیوں کی سی آوازیں محسوس
1: سی بات ہے
0: دوسرا یہ ہے کہ کم سنائی دینا ٹھیک ہے بعض دفعہ عمر بڑھتی ہے یا کان پہ چوٹ لگ گئی
1: ایسی بات
0: یا کسی نے زوردار چیز کان سے جا ٹکرائی
1: اونچی آواز کوئی سن
0: وہ آپ کوئی لاؤڈ ٹریفک کا شور ہے یا کوئی اور ایسی آواز ہے یہ چیزیں جو ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں
1: ٹھیک ہے
0: اس سے یا پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کان میں सीटियां और साई साई की आवाज आती
1: अच्छा
0: है।
1: अच्छा ये हाई ब्लड प्रेशर का मसला भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी तो ये चेक कराना लाजमी है।
0: बिल्कुल, इसीलिए कहा है कि जब आप मुआलिज से मशवरा करते हैं तो हर बारीक बीनी पे गौर होता है,
1: जाहिर सी बात है,
0: ठीक है। या फिर ये होता है कि खून की बारी बारी नालियां उनमें ब्लड सर्कुलेट पूरी तरह नहीं कर रहा होता, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। फिर बाद दफा मेडिसिन जो कि दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो किसी पर्पस के लिए होती हैं, उनका जो इस्तेमाल है, अब कुछ खास किस्म की मेडिसिन भी हैं जैसे पेन किलर, ये चीजें जो हैं ये, या ज्यादा मिकदार में एंटीबायोटिक्स कह लें, ये चीजें जो हैं इनके भी फिर असरात आते हैं तो आप कानों में सीटियां और साई साई की आवाज।
1: अच्छा, यानी कि हकीम साहब केमिकल वाली दवाइयां इस्तेमाल करने से,
0: उसमें यह है कि जब मरीज मिलता है तो मुआलिज से, खैर यहाँ माइक पे तो हम इतनी तफसील से बात नहीं कर सकते, लेकिन जब पेशेंट सामने बैठा होता है क्लिनिक में तो फिर मुआलिज अपनी पूरी तसल्ली करता है। स्पेशली जिस तरह मैं बाज़कात में मरीज टाइम को अकाउंट नहीं करता,
1: ऐसी बात
0: मेरा जितना भी टाइम लगे कि मैंने अपनी तसल्ली करनी है,
1: जाहिर सी बात है,
0: क्योंकि मैं एक चीज पे जानता हूँ कि जब तक मुआलिज सेटिस्फाइड नहीं होगा वो अपने मरीज को कभी भी मुतमईन नहीं कर सकता।
1: ये तो बात है,
0: क्योंकि अगर मुआलिज मुतमईन है तो समझे कि वो आपकी तशखीस कर चुका और आपका इलाज भी करेगा।
1: बिल्कुल ऐसी बात है।
0: तो चीज ये है कि ये कुछ मसले हैं कि उनकी आती है। फिर बाद कान का इन्फेक्शन,
1: ऐसी बात,
0: कोई गाना हो गया, कोई बाद लोग स्टिक से कान साफ करते हैं, बाद बाल पॉइंट मार रहे होते हैं, बार कोई चीज, तो वो अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि जो इसमें पर्दा है वो प्यास की झिल्ली से भी कमजोर है, जो प्यास पे झिल्ली एक होती है उससे भी कमजोर है, जिससे आवाज टकराती है, हवा टकराती है, तो आवाज फिर उसमें इन्फेक्शन या सोजिश, या फिर ये है कि आपके सर पे या गर्दन पे कोई चोट लग गई,
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: उसके असरात भी आ सकते हैं। फिर आप अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो,
1: ऐसी बात है,
0: तनाव में रहते हो, थकावट है, तो ये चीजें भी ऐसी हैं कि ये आपके कानों में साए साए और सीटियों की आवाज उभरेगी, क्योंकि आप नींद अगर पूरी करते हैं तो फिर ये चीज खत्म हो जाती है।
1: ठीक है,
0: ठीक है। अब ये चीज है कि आप पहले तो अपने आप को गौर करें कि आपका असल मामला है क्या।
1: ऐसी बात है,
0: अगर चंद एक सिम्टम्स जो बताए मैंने अगर महसूस करते हैं और अगर आप इसमें और तफसील, तो फिर या अपनी तसल्ली, तो फिर उसके लिए आपको अलशिफा दवाखाने पे मुझसे मिलना पड़ेगा। वो आप किसी दिन भी सुबह 8 से शाम 4 बजे तक आ सकते हैं, एक तो आपका मुआयना भी हो और तफसील से आपको इसके बारे में को ब्रीफ भी किया जाए।
1: ऐसी बात है,
0: और फिर इसका इलाज भी है।
1: एक मैसेज भी आया हुआ है कि जी अनस भाई, हकीम साहब डेली होते हैं क्लिनिक पे?
0: जी, सुबह रोजाना 8 बजे से शाम 4 बजे।
1: किसी किस्म की कोई छुट्टी नहीं होती, अगर होगी भी
0: अगर छुट्टियाँ होंगी तो वो आपको पहले से आगाह किया जाएगा।
1: बिल्कुल, आपको ऑन ईयर बताया जाएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। हकीम साहब, एक और मैसेज मेरे पास आया हुआ है
0: जी।
1: कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, आपको भी सलाम, हकीम साहब को भी सलाम। मेरी उम्र 35-36 साल है, 3 साल हो गए शादी को, मेरी कोई औलाद नहीं है। हकीम साहब से ये पूछे कि क्या बे औलादी का इलाज मौजूद है अलशिफा दवाखाना में?
0: जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह इसका 100% इलाज मौजूद है। उसके लिए भाई मेरे को सिर्फ ये लाजमी नहीं कि आप कपल की आए, आप सिर्फ जो भाई है वो ही अपनी रिपोर्ट्स लेके, बेशक दोनों की, तो आप अकेले भी आ सकते हैं।
1: चलें, ठीक है, मतलब कि हकीम साहब इलाज मौजूद है?
0: हाँ, इसका इलाज मौजूद है और देख के फिर ही कोई इन्हें मशवरा दिया जा सकता
1: है। चलें, ठीक है। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इनकी कॉल भी ड्रॉप हो गई है। सो जनाब, सेहत का पैगाम आप समाज फरमा रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की फ्रीक्वेंसी पर, बिल्कुल लाइव और बराह रास्त। इंशाल्लाह कल बरोज जुमा हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक अलशिफा दवाखाना में मौजूद होंगे। अलशिफा दवाखाना, शवाल मार्केट, नस्ट ट्रैफिक प्वाइंट, टांग सिटी। सो आपका कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप लाइव शो में कॉल SMS के जरिए पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जी, कॉल हकीम साहब आ भी जाती है, चली भी जाती है, नेटवर्क का मसला है जनाब। कॉल का SMS भी ऐसा ही है। कल एक मैसेज आया था हकीम साहब, अभी भी आया है कि अनस भाई, मैंने तो कल आपको मैसेज بہت سارے کیے لیکن آپ نے میرے پروگرام میں میسج نہیں پڑھے. تو جناب کبھی کبھی نیٹورک کا مسئلہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو میسیجز ہوتے ہیں وہ پروگرام کے بعد آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ نیٹورک کے مسئلے ہیں, اس وجہ سے مسئلہ پیش ہوتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. سال دبرے
1: چشم مسئلہ دا برور دا الرجی مسئلہ دا
2: بواسیر مسئلہ دا
1: بواسیر مسئلہ دا. صحیح صحیح صحیح. چور ٹیم کی جی
2: یارا دا ایک لاس ٹیم کی جی
1: کم جی نا خبری کو ساسو ٹانک نا شاد گرینا ورورا دا خو مطلب چھ ساسو ٹول کور و کور چھ مطلب چھ ٹول تا دا بواسیر مسئلہ دا سید جناب او دی علاج موجود دے ساسو کوشش وکی چې سبب روز جمعہ با حکیم سے موجود وی سبا ملاڈ بو جناوال د مخام سلور بجو پوری دی علاج خو موجود دے سیدا خو مطلب علاج موجود دے علاج دپار بس ساسو لازمی رازول شفا دوا خانه تا سیدا سید مزید ریڈیو ور وی حکیم صاحب سره دی باری کې مشوره کو جی حکیم صاحب بواسیر کا مسئلہ ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی ہے, میرے گھر میں تین بیٹے بھی ہیں بچے بھی ہیں ان کو بھی بواسیر ہے, یعنی کہ فیملی کو جو ہے نا بواسیر ہے. تو یہ بتائیے گا اب یہ اپنی زندگی میں اپنی روزمرہ زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں کہ ایک بندہ بھی نہیں تین چار بندوں کو بواسیر کی شکایت
0: ہو جاتا ہے. بعض دفعہ بات وہی ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے,
1: اویئرنیس نہیں ہے,
0: آگاہی نہیں ہے اس چیز کی. پھر دوسرا ہے کہ تھوڑی بدپرہیزی بھی ہے,
1: ایسی بات ہے
0: اب ظاہر بات ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض اپنے معاملے میں سنجیدہ ہوتا ہے کہ یار میں تکلیف نہیں جاتا.
1: حکیم صاحب آج کل بدپرہیزی جو ہے نا وہ تھوڑی نہیں ہے, وہ آج کل
0: معدے خراب ہیں لوگوں کے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے,
1: ایسی بات.
0: لیکن اگر اس پہ سنجیدگی سے غور کیا جائے اور آگے سے سنجیدہ معالج ہو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ یہ مرض ٹھیک نہ ہو سکے.
1: بالکل ایسی بات ہے. سوچنا اب اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ بالکل کل تشریف لائیں الشفا دواخانے میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. ہر قسم بیماری کا انشاءاللہ تسلی بخش علاج موجود ہے. خواتین و حضرات بس ایک مرتبہ جو ہے نا آزمانا لازمی ہوتے ہیں, آپ ایک مرتبہ آئیں الشفا دواخانہ میں اور اپنا علاج کرائیں, انشاءاللہ آپ کے جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے. آپ اعتبار کے ساتھ یقین کے ساتھ صبر کے ساتھ ایک مرتبہ تشریف لائیں الشفا دواخانہ میں. الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی. سو حکیم صاحب ایک اور میسج میرے پاس آیا ہے کہ السلام علیکم انس بھائی, میرے ساتھ کچھ دنوں سے ایک عجیب مسئلہ ہے. میرے ذہن میں خامخواہ کے خیالات آ جاتے ہیں جن میں سے میں کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی نہیں نکل پاتا, میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. کیا کروں, کیا یہ کوئی نقصانی بیماری تو نہیں ہے؟ جی حکیم صاحب کہتے ہیں کہ جواب ضرور دیجیے گا. جی حکیم صاحب کیا مشورہ دیں گے؟ نیگیٹو سوچنا, نیگیٹیوٹی زیادہ ہونا,
0: وہ ظاہر بات ہے, وہ ہے تو نفسیاتی مسئلہ, ٹھیک ہے نا. اور نفسیاتی زبان میں اسے مغلوب خیالات اس کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ اکیلے آدمی کا نہیں ہے, ہمارے اس بھائی کا نہیں ہے. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی اسی ذہنی دباؤ کا سامنا بھی کرتے ہیں.
1: ایسی بات ہے, بالکل. ہاں
0: اب اس میں ہے کیا, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو یہ ایک شدید دباؤ انزائٹی کی کہنے کے علامت ہی ہے.
1: ایسی بات ہے. ہاں
0: اس میں دماغ میں عجیب سے خیالات.
1: حکیم صاحب یعنی کہ شک ہونا,
0: دیکھیں وہ وسواس وسوسے خیالات. اب اس میں ہے ہی ایسا نا کہ ایسے خیالات ہیں, تصویریں ہیں یا وسوسے, وہ بار بار آتے ہیں.
1: ایسی بات ہے. ایک چیز کے بارے میں بار بار سوچ,
0: جنہیں انسان یا مریض جس کو آ رہی وہ خود بھی فضول سمجھ رہا ہے کہ یار یہ غلط ہے, فضول ہے, لیکن اس کے باوجود جتنا وہ انہیں روکنے کی کوشش کرے گا یہ اتنا ہی اس کو آئیں گے, اور جتنا ان سے پیچھا چھڑائے گا اتنی زیادہ شدت سے اس کو آئیں گے.
1: ایسی بات ہے, بالکل. ہاں
0: اور ظاہر ہے اس کے لیے پریشانی بنے گی. اب وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں اس کے لیے ایسے حالات میں نا. پھر اس سے یہی ہے کہ آپ ایسے خیالات سے لڑنا چھوڑ دو. صحیح ہے, آپ اس پہ زور نہ دو کہ میں زبردستی اس کو باہر نکال لوں گا. آپ زبردستی کسی کو گھر سے باہر بھی نہیں نکال سکتے, اگر وہی آپ اسے ریکویسٹ کریں پیار سے کہیں وہ چلا جائے گا.
1: بالکل.
0: تو یہ تو پھر خیالات ہیں, تو اس سے آپ نے لڑنا نہیں ہے.
1: ایسی بات ہے. ہاں
0: اور उसे आप जबरदस्ती निकालने की कोशिश भी ना करें। जितना आप लड़ेंगे दिमाग उतनी ही उससे ज्यादा अहमियत
1: है। ऐसी बात है,
0: ठीक है। ख्याल को आने दें, आ रहे आने दें,
1: आने दें।
0: सिर्फ आपने अपने आप को मजबूत करना है और अपना एक ही मोटिव रखना है कि ये सिर्फ एक ख्याल है,
1: ये सिर्फ एक ख्याल
0: और ये हकीकत नहीं,
1: ये हकीकत।
0: जब आप इस चीज को पाबंद कर लेंगे ना तो खुद ब खुद ख्यालात पीछे हटना शुरू हो जाते
1: ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी हकीम साहब अब ये बताएं ना कि ये एक बंदा बिजी है और एक बंदा बिल्कुल फारिग है, पूरा दिन मोबाइल देख रहा है, घर में पड़ा हुआ है, ग्राउंड जा रहा है, कोई काम वगैरह मसरूफियात नहीं है। तो हमने तो देखा है ज्यादातर जब आप काम से साइड पे हो जाते हैं, यानी विले बंदे का मैं आपको कह रहा हूँ, उसको ये मसला ज्यादा होता है।
0: लेकिन इसीलिए ना, इसीलिए इसका जो है वो ये है कि जब ऐसे मरीज को किसी को ख्याल आते हैं और वो फारिग है, ठीक है, वो तवज्जो किसी और काम पे लगा ले।
1: ऐसी बात ठीक है,
0: जैसे ही वो ख्यालात शुरू होंगे वो फौरन कोई जिस्मानी सरगर्मी शुरू, वर्जिश शुरू कर दे, ठीक है, और मतलब अगर बैठा है उठ के चलना शुरू कर दे, पानी पीना शुरू कर दे,
1: ऐसी बात है,
0: किसी से बात शुरू कर दे, ठीक है, अपने आप को मसरूफ कर ले, अपने जहन को बिजी कर दे, ठीक है, खाली ना छोड़े, और ऐसे काम कर ले जिसमें उसको नजर आए कि यार मैंने अपने अपने आप को और स्पेशली अपने दिमाग को मैंने बिजी कर दिया।
1: ऐसी बात है बिल्कुल,
0: ठीक है, फिर तो ये चीज पीछे हटती है।
1: ऐसी बात है।
0: दूसरी बात है कि फिर गहरे सांस लेना शुरू करे, ठीक है, जब गहरे सांस लेगा तो उस, क्योंकि बाजू का जब ये ख्यालात आते हैं तो फिर बेचैनी बढ़ जाती है।
1: हाँ, ये तो है।
0: और जब वो बंदा बेचैन होगा उसके लिए जो है ये टिप्स है कि वो उस परेशानी से निकलने के लिए कि वो गहरे सांस ले, पहले तो आराम से बैठ जाए,
1: ठीक है,
0: ठीक है, उसके बाद 5 सेकंड के लिए नाक से गहरा सांस ले, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ खींचेगा तो 5 सेकंड उसे रोकेगा, ठीक है, फिर आस्ता से मुंह के जरिए उसको छोड़ेगा,
1: ठीक,
0: सांस रोकी, बैठा सुकून से 5 सेकंड के लिए सांस रोकी, उसके बाद उसे मुंह के रास्ते नाक से रोकी है, खींच के, और फिर उसके बाद मुंह से उसको खारिज कर दिया,
1: ठीक है।
0: इससे ये होता है कि आपके दिमाग को सुकून मिल जाता है,
1: ठीक हो गया,
0: आपका दिमाग रिलैक्स पोजीशन में आ जाता है और फिर ये ख्यालात भी जो है वो हटते हैं,
1: ठीक है।
0: फिर या एक और तरीकाकार होता है जो अक्सर लोग कर लेते हैं कि अगर उन्हें इस किस्म के ख्यालात आए जो उन्हें परेशान कर रहे हैं,
1: ऐसी बात है,
0: वो उसको अपनी डायरी में लिख लें।
1: अच्छा, उस ख्याल को डायरी में लिख लें।
0: हाँ, उसको डायरी में लिखे, ठीक है, और के जो आपको तंग कर रहे हैं, एक तो जब आप उसे लिखना शुरू करोगे ना आपके दिमाग का बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि वो जो दिमाग दिमाग पे था वो कन्वर्ट हो गया आपके कागज पे।
1: बिल्कुल ऐसी बात है हकीम साहब, जब हम स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स हम यही कहा करते थे कि आपको जब कोई चीज याद नहीं हो रही है
0: आप लिख लो,
1: आप उसको लिख लो, और यकीनन हकीम साहब जब हम उसको लिखते थे तो वो चीज हमारे जहन में बैठ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो चीज हमें याद है।
0: जब हम किसी चीज को हम रट्टा लगा लें,
1: ऐसी बात है,
0: ठीक है, अमूमन बच्चे लगाते हैं रट्टे, लेकिन एक हरफ अगर भूल गए तो वो हो सकता है कि उसका सारा पैराग्राफ ही उसे याद ना आए।
1: ऐसा होता है,
0: ठीक है, तो उससे बेहतर है कि उसकी सहूलत के लिए आप जब उस पैराग्राफ को लिख लेते हो वो ऑटोमेटिकली आपके जहन में फीड होता जा रहा है।
1: बिल्कुल ऐसी बात
0: है, तो फिर वो आसानी हो जाती है। इससे भी यही है, जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग का जो है बोझ वो हल्का हो जाएगा।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: और ख्यालात की शिद्दत कम हो जाएगी।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल,
0: ठीक है। हाँ, इसमें ये है कि इसमें ये मदद तो की जा सकती है बहैसियत एक मुआलिज के, कि आप ख्यालात ये बताएं।
1: हाँ जी,
0: कि यानी आप दवाखाने पे आ सकते हैं, फिर आपसे ये सवाल हो सकता है कि आप ये बताएं कि आपको सवालात, ये जो ख्यालात हैं,
1: ऐसी बात है,
0: ये किस वक्त ज्यादा आते हैं, सही है, कि दिन में आते हैं, रात में आते हैं, और आप श्योर हो कि ये किस किस्म के ख्यालात हैं,
1: ठीक है,
0: ठीक है, ये कुछ सवाल पेशेंट से हैं। फिर उसके बाद मसलन सफाई के मुतल्लिक आ जाते हैं,
1: बात है कि मैंने वो चीज साफ की थी या नहीं की थी,
0: या किसी बीमारी के मुतालिक आ जाते हैं।
1: ऐसी बात है कि मुझे फिलहाल बीमारी तो नहीं हो रही है,
0: ऐसा है लोग अपने आप को समझते हैं, तसव्वुर करते हैं।
1: हकीम साहब, आपको मैं एक दिन बता रहा था, हमारे साथ दोस्त हैं तो वो रेडियो पर हमारा शो सुन रहे थे, तो गालिबन आपने बात की थी हकीम साहब गुर्दों के बारे में, दर्दों के बारे में, तो वो जब मैं शो करके गया तो वो जो है ना मुझे कह रहे थे हकीम साहब के अनस भाई कल जो है ना हकीम साहब ने गुर्दों की बीमारी के ऊपर बात की और मुझे लग रहा है कि मुझे ये मसला है।
0: सही।
1: तो मैंने कहा यार आप आ जाएं हकीम साहब से अपना चेकअप मुआयना करा लें। तो जी हकीम साहब ऐसा ही होता है ना, हम किसी बीमारी को अपने समझ लेते हैं,
0: हम जिसने डीपली उसको अपने जहन पे सवार करेंगे, हम खाम खा उसमें इन्वॉल्व हो जाए,
1: ऐसी बात है बिल्कुल। हाँ,
0: अब दूसरा ये है कि बाज़ुकात किसी को खौफ होता है किसी किस्म के नुकसान का,
1: ठीक है,
0: तो अब आपके साथ नींद का मसला है, ये भी देखना है उससे पेशेंट से सवाल करके,
1: ठीक है,
0: या आप जिस्मानी थकावट महसूस करते हो, ये कुछ सवाल हैं जब उससे किए जाते हैं तो इसका प्रॉपर हल निकल आता है,
1: ठीक है,
0: और इसका हल मौजूद है।
1: अच्छा,
0: लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मरीज एक दफा दवाखाने पे आए।
1: अच्छा हकीम साहब, इसका कोई देसी नुस्खा, कोई टोटका, या मतलब कि पहली बात तो ये है कि अपने आप को मसरूफ रखना चाहिए इंसान को,
0: बिल्कुल मसरूफ रखना चाहिए, अपनी जो है एक्टिविटीज उनको देखना चाहिए कि मैं नींद पूरी ले रहा हूँ, मैं ज्यादा अपने जहन को फारिग तो नहीं छोड़ रखा। वैसे भी कहते हैं कि फारिग जहन जो है वो शैतान का घर है।
1: हाँ ऐसी बात है, बिल्कुल
0: ठीक है ना, तो शरारतें ही सूझती हैं उसमें फिर।
1: अच्छा हकीम साहब, इसके अलावा एक और बात मैंने पूछनी थी, बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस आते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि अनस भाई हकीम साहब से पूछे कि सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करना चाहिए, ये नहीं कि सुबह सवेरे आंख खुल जाए।
0: देखें उसके लिए पहली बात तो ये है जो पहले बुजुर्ग करते रहे, आप जल्दी सोने की आदत डालें।
1: अच्छा ठीक है,
0: आप जल्दी उठेंगे। हाँ शुरू में आपको तंगी जरूर होगी, लेकिन जब एक दो दफा आपकी रूटीन बनती है, आप नोट कर लीजिएगा कि ऑटोमेटिकली आपकी आंख खुलेगी।
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: जब आप नियत करके सोते हैं कि मैंने सुबह जल्दी उठना है तो आप उठते हैं। दूसरा, आप अपनी खुराक को, अपने पेट को हल्का रखें, पेट को भरे नहीं।
1: अच्छा,
0: अजीब अजीब चीजों से या
1: खाने से
0: आप हल्का रखें तो इंशाल्लाह आपको नींद बेहतरीन आएगी।
1: चलें ठीक है। सो हकीम साहब, एक और मैसेज मेरे पास आया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम अनस भाई, हकीम साहब को भी सलाम। हकीम साहब, मोटापे के लिए कोई नुस्खा तो बता दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हकीम साहब जो है ना, जिस बहन या भाई ने नाम तो अपना नहीं लिखा, आपने मैसेज किया है हकीम साहब डेली शो में जो है ना मोटापे का नुस्खा बताते हैं।
0: बस वो बात यह है कि मोटापे के मरीज बहुत ज्यादा,
1: ऐसी बात है हकीम साहब,
0: और कुछ को क्रेज है, जरा थोड़ा सा समझते हैं ना कि हेल्दी है, वो समझते हैं कि हमें स्मार्ट होना चाहिए।
1: हाँ, और जो स्मार्ट है वो कहते हैं
0: हमें मोटा होना चाहिए, ये एक अजीब है। बहरहाल बहन है या भाई है उनके लिए बेहतर तो ये है, या जो हमारे ओबिसिटी के या मोटापे के,
1: ऐसी बात है, जो भी बहन है भाई है बच्चे हैं
0: उन सबके लिए वो ऐसा है कि आप एक गिलास में दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें, ठीक है, और उसे अच्छी तरह उबालें।
1: ऐसी बात है,
0: जब पानी देखें उबल गया उसके बाद आप उसको उतार लें और नीम गरम,
1: ऐसी बात है,
0: हल्का हल्का कोसा हो तो इसमें, अगर घर में आपके पास खालिस शहद मौजूद है तो उसमें एक छोटा चाय का चम्मच जो है वो मिला लें,
1: ठीक है,
0: और सुबह निहार मुंह पी लिया,
1: बिल्कुल ऐसी बात है,
0: और एक घंटे के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं, या फिर दूसरा है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि एक गिलास गर्म पानी लें, उसमें आधा लीमू का रस डाल लें और एक छोटा चमचा शहद मिला के वो भी आप सुबह निहार मुंह पी सकते हैं। ये उनके लिए ज्यादा कारामद है जिन पर चर्बी की तह ज्यादा है, और या फिर ये है कि अदरक और दालचीनी की चाय,
1: अच्छा ये भी समझ,
0: ये मोटापे के लिए बेहतरीन है। इसमें भी यह है कि पानी में आप थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डालें और दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डाल दें,
1: ठीक है,
0: फिर आपने इनको पकाना है और छान कर दिन में एक या दो बार ये चाय पी सकते हैं। हाथ पे जरूर, इसमें मीठा नहीं डालना, चीनी नहीं डालना।
1: अच्छा, आपने फीकी चाय पीनी,
0: इसमें आपने गुड़ या शक्कर, या आप चाहेंगे तो खालस शहद बाजार।
1: अच्छा, हकीम साहब ये बताइएगा कि क्या चीनी भी मोटापे का बाइस बनती
0: है? बिल्कुल चीनी बनती है, बिल्कुल बनती है, और ये नुकसानदेह है,
1: ठीक है,
0: इसकी बजाय गुड़ हो जाए, शक्कर हो जाए देसी, या फिर आपके घर में अगर खालस शहद पड़ा है दरख्त से उतरा हुआ, वो चाहे छोटी मक्खी का है या बड़ी मक्खी का है इससे नहीं, लेकिन खालस शायद है वो आप हस्बे जायका उसमें शामिल करके
1: ठीक है,
0: आप ये चाय दिन में दो बार पी सकते हैं। इससे जो है आपकी चर्बी जो है वो पिघलेगी, निकलेगी जिसमें से बाहर, जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ेगा,
1: ठीक है,
0: तो इंशाल्लाह आपका जो वेट है वो लूज होगा बगैर किसी नुकसान के।
1: चले ठीक है हकीम साहब, प्रोग्राम का टाइम भी दी एंड होने वाला है, सो ये बताइएगा कि कल आप इंशाल्लाह जुम्मे के दिन मौजूद होंगे अपने क्लिनिक
0: जी में। बिल्कुल, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक मैं हस्बे रवायत वही अपने टाइम के मुताबिक
1: मामूल के मुताबिक,
0: क्योंकि सुबह जुमा है और जुमातुल मुबारक के 2 बजे के करीब जमात भी होती है,
1: ऐसी बात
0: तो बस वही जो आधे घंटे का ब्रेक है उसके अलावा और कोई।
1: चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी। सो बिल्कुल जनाब, आप लोगों ने गुफ्तगू समाप्त फरमाई देसी तिब के माहिर हकीम हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब की, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद रावलपिंडी से है और पिछले 30 सालों से देसी तिब से वाबस्ता हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में अपनी जो खिदमात हैं सर अंजाम दे चुके हैं, अब आपके शहर टांग में अपनी खिदमात दे रहे हैं। जितनी भी बहनें हैं भाई हैं, चाहे टांग से हैं, मजफात से हैं, वजीरिस्तान से हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आपको कोई भी सेहत के हवाले से मसले मसाइल हैं, किसी मेरी बहन को किसी मेरे भाई को इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़्द ट्रैफिक प्वाइंट टांग सिटी। सो जनाब, आपको कोई भी मसला है, आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, आपके मैदे के मसाइल हैं, आपके दर्दों के मसाइल हैं, आपको घुटनों का दर्द है, आपकी मसानी की पथरी है, गुर्दे की पथरी है, अदर देन आपको आधे सर के दर्द का मसला है, माइग्रेन का मसला है, जिल्द के हवाले से आपके चेहरे पर कील माह से छाया है, तो इंशाल्लाह हर किस्म बीमारी का तसली बख्श इलाज किया जाता है अलशिफा दवाखाना में। और कल बरोज़ जुमा अलशिफा दवाखाना सुबह 8 से लेकर शाम 4 बजे तक खुला होगा, हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब मौजूद होंगे। मजीद तफसीलात मालूमात के लिए और प्रोग्राम के बाद हकीम साहब से राबता करने के लिए नंबर नोट फरमाइएगा 0319-55-23-404 0319-55-23-404 पर। इसी के साथ मेरे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान एंड अस्सलाम।

0: माँ हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
1: यू आर लिस्टिंग रेडियो अमन 88.4 टांग, स्टे ट्यून विद अस। द जिला टांग द हल्को द पारा द खुशहाले जेरे उस्तासु त द मयरी इलाज द पारा चरत हम द तलो जरूरत नश्ता उस्तासु पोखपल हार टांग के द हर किस्म बीमारे इलाज पो आसाना की दलेशी मसलन पट्टू दर्दुना, जुड़ुनो दर्दुना, बवासीर खुनी बदी नवासीर, गुर्दे काने, त्रिहे काने, जुड़ुनो दर्दुना, पट्टू दर्दुना, यदीन अलावा द जनाना और मर्दना हर किस्म पट्टू मरजुन इलाज हप आसाना की दलेशी। नो पता याद सते सेहत होम्यो मेडिकल अस्पताल, नूर मार्केट, पुराना डखाना गली, तंग बाजार, टांग। मोबाइल नंबर 0331-66-32-231। शुक्रिया।
2: रेडियो अमन।